0: 98 42 80 25 84 दयाल सुनचारी उद्योग सिद्धिचरण नगरपालिका 12 हुलाक टोल ओखलढुङ्गा।
1: मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो

0: आफ्नै फिल्म टाइम चेक।
1: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
2: टाइम चेक का साथमा ओम दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल, सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि ओखलढुङ्गा।

0: Még se egy csártozom, átmi tavas.
1: आफ्नो फिल्म टाइम चेक
2: अहिले दिउँसोको एक बज्यो। टाइम चेकको साथमा अन्दयाल सुनचाँदी उद्योग तथा भाँडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बालमन्दिरमाथि उखलढुङ्गा।

0: 제일 짧은 성우 아스메다.
1: 아플레팸 타임지
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो। टाइम चेकको साथमा अमदयाल सुनचाँदी उद्योग तथा भाँडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बालमन्दिरमाथि उखलढुङ्गा।